तो साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो इस लाइव प्रोग्राम में. मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और ये हमारा 708 एपिसोड है ऑन प्लेन्स मीडिया जो पहले प्लेन्स एफएम 96.9 के नाम पे जाना जाता था एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन 96.9 फ्रीक्वेंसी. अगर आप गाड़ी में सफर कर रहे हो तो आपको भी हम स्वागत करते हैं इस अपने इस प्रोग्राम में. जी हाँ, हमेशा की तरह जिसे हम आते हैं हमारे पास कुछ खास समाचार रहता है, स्पेशली जो कुछ हो रहा है क्राइसिश में वो सब इवेंट्स के विषय में भी हम आप से शेयर करते रहते हैं और कुछ संगीत भी हमारे पास होता है जो आपसे हम शेयर करते चलते हैं. और आज अगर क्रैशेज के ओर देखते हैं तो इट्स अ बिट ऑफ अ मिक्स्ड एटमॉस्फेयर. कुछ गर्मी भी थी दिन में, द टेम्परेचर वेंट अ बिट मे बी अप टू 15 डिग्रीज एंड देन उसके बाद में फिर धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है एंड ऐसा अनुमान है कि रात्रि को ठंडी रहेगा. जी हाँ, अभी तो विंटर से गुजर रहे तो इट इज़ अ बिट चेंजिंग और आई नो बीमारी भी काफ़ी चल रही है. सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, चाय पीजिए गर्मी गर्मा गर्मा और हमारा प्रोग्राम का मजा लीजिए. जी हाँ, और अब आपको ये भी बता दें कि कुछ प्रोग्राम्स भी हो रहा है क्राइस्टचर्च में, स्पेशली अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो. आज ग्रैंड कीर्तन संध्या है जो टेम्पल टन हॉल में होने जा रहा है. सो इफ यू वांट टू गो देयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 पीएम और काफी रात्रि तक चलेगा. तो अगर आप जो फिजी कीर्तन का मजा लेने जाना चाहते हो तो जा सकते हो. जो कलाकार है निमित सिंह जो अपना लोकल कलाकार है और साथ साथ में रानी मुदलियार जो ओकलैंड के निवासी है वो उनका जो आप कीर्तन वगैरह सुन सकोगे तो ज़रूर जाइए. इट इज़ हैपनिंग एट टेम्पलटन हॉल और उसका जो टिकट एंट्री है $15. सौ पैसे आप साथ में ज़रूर ले जाए तो यू कैन गो देयर एज़ वेल. और आज हमारे इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कुछ गीत सुनाने के लिए, बट हमेशा वही होता है कि हमारे पास जब गेस्ट होते तो शायद कुछ संगीत कम हो जाती है. तो हमारे पास गेस्ट जो जुड़ रहे हैं और इस गीत जो पहला गीत हम सुनाने जा रहे हैं उसके बाद में हम उनसे बातचीत करते चलेंगे. और आज हमारा जो विषय है बांसुरी ए टेल ऑफ लव. आपने सोशल मीडिया में तो काफ़ी बार इसका जो प्रमोशंस पोस्टर्स वगैरह देखे होंगे. इसकी जो पूरी जो जानकारी है हम आज आप तक पहुंचाएंगे. तो हमारे साथ जो गेस्ट है पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में हम उन्हें भी ऑन एयर लाएंगे ताकि हम उनसे बात कर सकें. तो हमारे साथ जुड़ चुकी है मोनिका जी, मोनिका सूद, जिसे क्रैशेज के आई थिंक सभी लोग अभी तक तो जान चुके होंगे, जो काफ़ी पॉपुलर है. साथ साथ विष्णु जी हैं जिसका हम काफ़ी सालों से देखते हैं और अच्छे जान पहचान है. और साथ साथ में हम संगीता जी से भी बात करते चलेंगे. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बांसुरी ए टेल ऑफ लव एंड ऑब्वियसली जो इसके पीछे है कथाकार एनजेड यानी कि चारू जी जो काफ़ी परिश्रम करती है. शी कुडंट बी हियर टुडे बट किसी और समय हम उनसे भी बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और जो पूरी समाचार है आप तक लाएंगे. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं. जैसे हमने बोला हम एक आपके लिए सॉन्ग पेश करेंगे. उसके बाद में जो लोग हमें हमेशा फेसबुक लाइव द्वारा देखते हैं तो आप फिर हमें फेसबुक पे भी जुड़ सकोगे ताकि हम ये जो हमारा इंटरव्यू है लाइव आप देख सकोगे. और साथ साथ में जो लोग सोका में दिलचस्पी रखते हैं तो आई नो शायद आप हैप्पी होंगे, शायद सेड होंगे, बट देखते हैं कि इस बार जो वर्ल्ड कप कौन जीतता है. और चलो हम आगे बढ़ते हैं, अपना ये सॉन्ग प्ले करते हैं. उसके बाद में We are going to go direct with our interview with Monica, Vishnu and Sangeeta.

0: Sakura.
1: फिर मुड़ गया भाई यो मरवाएगा भाई अरे सरदार वो रामगढ़ का हैंडलर ठाकुर
0: वो ठाकुर उसकी शादी है शादी कब है कब है शादी
1: सरदार इट इज टुमारो
2: चाहे ठाकुर की शादी हो या गब्बर की चाहे कुछ भी ओकेजन हो बाल तो कटाना है हैंडसम तो दिखना है तो सिर्फ एक नाम याद रहे अपुन का चॉइस नीर बाबा बोले तो एनजेड फ्लेम्स बाबा 190 वेरेकी रोड प्रिनवा स्टेज नो अपॉइंटमेंट्स नेसेसरी नीर बाबा इज एन एक्सपर्ट इन रेगुलर हेयर कट्स फ्लैट टॉप रेजर शेव स्किन फाइट सीजर कट्स रेजर कट्स चिल्ड्रन कट्स एंड बियर्ड ट्रिमिंग उसका नंबर है 027-127-3687 या तो फिर 03-974-3171 सुअर के बच्चों नाम याद रहे एनजेड फ्लेम्स बाबा
3: जी हाँ नाम याद रहे एनजेड फ्लेम्स बाबा अगर बाल कटाना जरूर चाहिए मेरे की रूट हमारे दोस्त नीर जी के पास तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं सभी को और खास करके जो लोग हमारे साथ फेसबुक में भी जुड़ रहे हैं उनको भी स्वागत करते हैं अपना 708 एपिसोड में मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और जैसे हमने शुरू में मेंशन किया था हमारे साथ जो गेस्ट है जुड़ चुके हैं विष्णु जी है और मोनिका जी और संगीता जी थैंक यू फॉर कमिंग सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम बात करने आज जो हमारा टॉपिक रहेगा जिस विषय में बात करेंगे वो है बांसुरी A tale of love, and mostly we will be talking in English so that Sangeeta can cope up and we can be all together. Otherwise, she might start losing us after a while. So it's quite exciting. ये जो event है हम इसके विषय में काफी बार सुने हैं और social media में तो आपने देखा होगा. And it's quite कहेंगे नाइस हम बोलेंगे बिकॉज इट इज अबाउट कृष्णा और आपको तो पता है कि कृष्णा की जब कहानी हम सुनते हैं देन वी कैन गेट सो इन्वॉल्व्ड और काफ़ी अच्छा लगता है और अभी जो लोग हमारे साथ फ्रीक्वेंसी में थे उसने जो गीत भी सुना था राधा कैसे ना जले आनो ये काफ़ी पॉपुलर गाना था और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था जिस तरह से ये जो मूवी लगान में पिक्चराइज किया गया था तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें अगर आपको जाना है जो कीर्तन नाइट हो रहा है टेम्पल टाउन हॉल में आप जा सकते हो वहाँ भी इफ यू हैवन बोर्ड द टिकट यू कैन जो डोवा टिकट अवेलेबल रहेगा ग्रैंड कीर्तन संध्या वहाँ पे जा सकते हो और इस प्रोग्राम के आखिर में हम एक इंटरव्यू भी हमने किया था अभी हाल ही में अपने जो केवाईसी सेगमेंट यानी कि नो योर कैंडिडेट जॉर्ज हैम्पटन जिसे वो भी हम प्ले करेंगे तो चलो हम इंटरव्यू जो शुरू करते हैं एंड वंस अगेन वेलकम मोनिका जी संगीता एंड विष्णु And so we will start with our normal usual questions. So we will start with Sangeeta because I think you've been here for the first time.
4: Yes, I'm here for the first time.
3: Oh, I see. So what have you been up to today?
4: Today, a lot.
3: Okay.
4: Yeah, it was a nice, pleasant day. So we did go out and we have this coming up. And I also helped my friend move out.
3: Okay.
4: So that's a lot of hard work today.
3: Yes, you're picking in. Yeah,
4: yeah, and then I came straight here.
3: I see. And where are you originally from?
4: I'm from Kerala.
3: Kerala, I see. Yeah. And how long have you been here?
4: From 2017, so almost... 7 years.
3: Okay, yeah, that's a long enough time. So I think we will next time when we come to the studio, we'll be talking in Hindi.
4: Yeah, so, I just learned English, so yeah. I don't think I'll see.
3: Yeah. And Vishnu, what have you been up to? Are you singing? You're playing an instrument, I think.
5: I do play guitar, but yes. Here in a different role, I'm the creative director. That is my role for Basuri.
3: Basuri, the event that's coming up.
5: That's right.
3: Yeah.
5: So Basuri is the dance drama, actually giving equal importance to drama and dance. And of course, it's presented by Kathakas, a well-known dance school in New Zealand, I would say, very prominent in Auckland and Christchurch as well. And it's happening on the 12th of September in Black Box Theatre. It's one of the state-of-the-art amphitheatre right by the CBD, very close to the Botanical Gardens. And there will be two shows happening on the 12th of September because we know that many patrons would like to join us. So it's two shows, one at 2 p.m. and one at 6:30 p.m. And the language is English. So there are 55 performers, ages from 5 to 50 years old, in the group. And we've been practicing.

0: before we go any further, so I know by now people would be keen and they'll be wanting to know where they can get their tickets from.
1: Absolutely. Tickets are available via Kathaka New Zealand social media and also by Dry Tickets. It's available now. Again, two shows there on September 12th, 2 o'clock and 6:30. 6 o'clock.
0: Yep. So there you go. If you want to buy tickets, as Vishnu has said, and what we will do is we'll try to put the link in this particular video in the comments section so that you know where you can grab your tickets from. And the date is in September, so not far away, and you can always kind of forget. So do reserve your tickets, and this could be like a lifetime opportunity, because we are in Christchurch. We don't really see these things happening often. And once they have done this production, you have to wait for many, many months before they can actually think of another one. It's so easy, you know, getting everything together, as Vishnu is mentioning. It's quite a high tech. And Hang Up, they have been here for many, many years, because I think I used them way back, maybe 10 or 11 years ago. So I know they are around for many years in Christchurch. Monica ji, when we talk about this program, itna to pata chal chuka hai that it is about Krishna and Radha, and it's coming to be a love story. So ye kuch aur iske vishay mein aap batana chahoge?
2: Before like we finish this, main ye zarur add karna chahungi ki this is a very unique collaboration between a dance school and a theater group. So the creative team that is behind this, of course Vishnu ji, he's giving us how to present it. We have Charu, जो हमें डांस के हाउ टू एक्सप्रेस थ्रू डांस जो हमें सिखा रहे हैं. देन वी हैव, एज यू मेंशन, वी हैव सनोज, ब्यूटीफुल ट्रैक दैट ही हैज क्रिएटेड. कथाकार्स टीम सप्सरा, हु आर बिहाइंड द सीन्स वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, लाइक यू नो. एंड देन वी, एज विष्णु जी मेंशन, प्राची जी एंड राकेश जी एडमिन. सो दिस इज कमिंग अप एज अ वेरी यूनिक थिंग. आपने इससे पहले ऐसा क्रिएटिव एक्सप्रेशन आर्टिस्ट का नहीं देखा होगा जहां एक डांस स्कूल और एक थिएटर मिलकर एक ऐसी चीज सामने ला रहा है. एक अपना एक एक्सप्रेशन है. देखिए, जैसे संगीता ने बोला कि राधा कृष्ण की स्टोरी सबको ही जानते हैं, पर उसको एक बहुत ही सुंदर तरीके से म्यूजिक, डांस, एक्सप्रेशन, हाव भाव के साथ कैसे स्टेज पर प्रेजेंट करना है, वो ये आपको बांसुरी में देखने को मिलेगा. और मैं आपके सभी श्रोताओं से, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सबको यही बोलूंगी कि आप कुछ अलग देखना चाहते हैं, अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इस शो को बिल्कुल मत मिस करिएगा, जरूर आइएगा. और दो मिनट मैं लूंगी इससे पहले कि मैं फिनिश करूँ, सॉरी, क्योंकि हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं हमारे सारे स्पॉन्सर्स के लिए. हमें बहुत कम्युनिटी सपोर्ट मिला है और लोकल बिजनेसेस आगे आए हैं हमको सपोर्ट करने के लिए. कुछ के नाम संगीता ने आपको बता दिए थे, कुछ के नाम मैं ऐड कर देती हूँ. हमारे पास ग्लोलेन ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स है, ए टू जेड अकाउंटिंग लिमिटेड, रुकमणी सिल्क्स, वाइमा ग्रोसरी स्टोर, बैडी स्पेस, ब्लॉसम डेंटल, सेवियोर कैफे, ये सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं. और हमारे सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स में आरोहा इवेंट्स, प्रिंट प्रो, जिफ एंजॉय फोटोग्राफी, ध्रुमिल देसाई फोटोग्राफी एंड फिल्म्स. और मिस नहीं कर सकते हम अपने सोशल मीडिया पार्टनर्स को. सबसे पहले जलसा विजी रेडियो, थैंक यू सो मच. हमारे साथ ग्रो विद अमित है, इंडियन न्यूज लिंक, नमस्ते भारत, टीवी टाइम्स एंड रेडियो सादेवाला. और जो हमें इस ब्यूटिफुल जो उसको डेकोरेट करेंगे वो है हमारे फैनफेयर वेडिंग एंड इवेंट प्लानर्स. हेयर एंड मेकअप जो हम सबको उस दिन बहुत ही ब्यूटिफुल दिखाएंगे वो है हेयर एंड मेकअप बाय रिचा. और हम हमारे फूड पार्टनर्स का भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहते हैं, वो है एमबीए फ्यूजन, जो हमको हमारा पेट भरा रखेंगे ताकि हम सब एंजॉय कर सकें. सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू इनवाइट वन एंड ऑल, जिन्होंने अभी तक अपने टिकट्स नहीं लिए हैं, आप आइए और देखिए कैसे एक 5 साल के बच्चे से लेकर 50+ एज के ग्रुप के, और सिर्फ डांस स्कूल और थिएटर से ही नहीं, पीपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ जो है उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया, और वो भी विष्णु जी और चारू जी के साथ जुड़े हैं. तो हम पूरी टीम, हम सब आपका वेट करेंगे, आप वहां पर जरूर आइए.
0: Thank you so much, Monica. And Sangeeta, do you know how many artists are going to be on stage that day?
3: Around 50 plus, because there are kids as well, and there are the team including Kathakars, there are more than 20 students from there, and then there are actors from Kiwi Indian Theatre, and then also locally created artist who's been looking for opportunities like this. So yeah, approximately 50 plus on the stage, with a lot of drama, dance and acting. Yeah. So it's going to be fun.
0: Yep. And is there going to be like one Krishna and Radha, or they'll be kind of changing roles? And
1: that will be a bit of a surprise for we would like to reserve.
2: Yes.
1: That.
2: Yes.
0: So have you figured out who is going to play the role of Krishna and Radha?
1: Of course. Yes.
2: Yes.
1: Yes.
2: We have. Yeah.
0: So it's already kind of taken, so there's no vacancy.